0: ये बेडरूम में और उधर वो वॉशरूम है।
1: 따라란 딴딴 분홍색과 보라색 벽이 화사함을 더해주고 초록색 침구가 안정감을 주는 침실.
0: 예, 여기 सेटिंग रूम है, ये टीवी लाउंज, यहाँ हम बैठते हैं।
1: 이곳은 아늑한 거실이고요. 이번엔 어디일까요?
0: 이 밑에는 다음 가나바나테.
1: 와, 진짜 넓고 깨끗하네요.
0: 이게 भी गेस्ट रूम है, इसको ड्राइंग रूम भी बोलते हैं। इसमें और दूसरी बात थी, ये अजीम के जो छोटे भाई थे उन्होंने कोरियन लैंग्वेज सीखी, उन्होंने ये एकेडमी बना ली। मतलब जो हमारे गांव के लड़के थे, जब अजीम गए हैं, अजीम ने इतनी मेहनत करके जब ये घर बनाया, उनको भी इंटरेस्ट हुआ कि हम भी ऐसे ही लैंग्वेज सीखें, इसी तरीके से फिर जैसे अजीम गए हम भी जाएं और ऐसे मेहनत करके हम भी अपना कैरियर बनाएं इधर।
1: अजीम 씨를 보며 파키스탄의 작은 마을에서 시작된 코리안 드리밍. 아짐 씨의 남동생이 한국어 공부를 시작하면서 많은 청년들에게 한국어를 가르쳐줬던 공간이라고 하네요. 이 멋진 집을 지어놓고도 가족과 함께 살지 못하는 아짐 씨인데요. 그날 오후 식사 준비에 한창인 우즈마 씨. 그런데 손이 화려하죠? 친척 결혼식을 축하하기 위해 천연 염료 헤나로 손에 그림을 그리는 전통이 있다는데요.
0: 뭐? 메리 피드로 타라오 워시 걸도 룸이 그래서네. 아리즈미 자라나? 니코. 니까?
1: 엄마 옆에 붙어 있다가 이게 웬 봉변인가요? 파키스탄 양파가 유난히 맵다는데 이거 큰일입니다. 급한 마음에 손으로 닦아주는 엄마. 그런데 좀 전에 양파 깐 손 아니에요?
0: 나이 오리. 나이 बेटे इसको मम्मा ने कुकिंग करनी है सोनिया। देर हो रहा है, पहले खाना नहीं खाना, पहले लेट हो रहा है। दिखाओ कहां हो रही है, दिखाओ कहां हो रही है। इधर टेस्ट करो, इधर इधर।
1: 아빠가 있었다면 번쩍 안아 데려갔을 텐데. 아, 이럴 때 참 난감하죠.
0: अब ठीक हो? ऐसे ऐसे किया आपने, ऐसे ऐसे। चलो गुड हो गया। चलो अब इधर खड़े हो जाओ, मम्मा खाना बना दे, ठीक है?
1: 우는 아이를 달래놓고 본격적으로 시작된 요리. 오늘 선보일 메뉴는 가족에게 특별한 음식이랍니다.
0: 아짐, मतलब मेरे हाथ से बने बहुत शौक से खाते थे। बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, घर में भी सब शौक से खाते हैं। कुछ ना अजीम, आज क्या बनाऊं? बिरयानी बना लेना। हाँ जी, ऐसे।
1: 남편 아짐 씨가 좋아해서 결혼 후 가장 많이 만든 음식이라는 비르야니. 향신료를 넣고 소태 찐 쌀에 조린 닭고기를 넣고 섞어주면 되는데요. 간단해 보이지만 생닭을 손질하는 시간까지 장장 3시간이 걸린다네요. 잠시 후 시작된 3대의 식사. 무스피라를 안고 있는 이분이 아짐 씨의 어머니고요. 아나스 씨는 아짐 씨의 동생입니다.
2: हमारे साथ आकर बिरयानी खा लें, ठीक है ना?
0: आवाज लगा दो, आवाज लगा दो बाबा जान को, आवाज लगाओ।
2: अजीम आ जाओ, उस पर आके पापा आ जाओ,
3: बिरयानी खाओ।
0: कौन सी आवाज
2: है? ऊंची आवाज
3: से दो बाबा जान, खाना खाओ।
1: 가족들의 식사가 따뜻하고 맛있을수록 더욱 생각나는 한 사람, 바로 아짐 씨겠죠?
0: क्या यही कि पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं बना सकते ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, तो उनके लिए वो ना भी कोई बना के देने वाला तो चुप करके वैसे ही सो जाते हैं और कहते ना भी खाए तो खैर है। तो मेरे लिए सबसे टेंशन होती है कि जी ने पता नहीं कुछ

0: खाया भी है या नहीं, वैसे ही अभी है भूखे या कैसे?
1: 그렇다면 아빠의 저녁 시간은 어떨까요? 아내 걱정처럼 굶는 것 같지는 않네요. 이렇게 로띠도 굽고 말이죠.
2: 요리하기 너무 힘들어요. 제가 하기 싫어요.
1: 그런데 웬 갑자기 신문이죠?
2: 이거 밥상 같은 거예요. 신문은 변해요.
3: 신문이 더 변해요?
2: 네.
1: 단출한 메뉴에 그리움을 반찬 삼아 저녁밥을 먹는 아빠 아짐.
2: 힘들어요. 외로워요. 혼자 식사할 때 가족하고 고향 음식 생각 많이 나요.
1: 아짐 씨에게 어려운 것은 요리가 아니라 혼자만의 식사인지도 모릅니다. 매일 밤 9시가 되면 아빠는 집으로 전화를 거는데요. 아이들이 저녁밥을 먹기 전인 오후 5시에 맞춰서 말이죠.
2: 아슬람 알레이쿰.
4: 아슬람 알레이쿰.
2: 와알레이쿰 슬람. 안디 케알 잘해? 틱타고?
4: 아니 틱톡
2: 그때 나 봤어. 맨 틱톡 알라 그 슈퍼 क्या हो रहा है? इधर देखो इधर. 이들.
4: 뭐죠 버전? 버전 कैसे
2: हैं?
4: 버전 क्या कह
2: रहे हैं? 이들 अच्छा चाचू ऐसा से बात हुई थी क्या कहता था चाचू ऐसा वाह माशाल्लाह ओके ओके ओके चल 보고 싶은 딸님이다 진짜요 ये मेरी बड़ी बेटी है तो ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है जब ये बातें करती है तो बहुत अच्छी लगती है इसकी छोटी छोटी सी बातें अभी इसकी तोतली बातें होती हैं जिनकी बहुत देर बाद समझ आती है लेकिन जब समझ आती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये मेरी दूसरी बेटी है इसका नाम मुस्फरा है ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अजीम की छोटी कापी है तो ये बहुत मुझे बहुत प्यारी है अभी तक मैंने देखा नहीं है इसको तो मैं अभी इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुलाकात होगी तो मैं इसको देखूंगा
1: 동해 번쩍 서해 번쩍 회사에선 무슨 일이든 나서는 홍반장 같은 아빠지만 가족을 향한 그리움만큼은 어쩔 수가 없나 봅니다. 2019년 중매로 결혼한 두 사람 하지만 사랑 없는 결혼을 한 건 아닙니다. 첫눈에 서로 반해버렸거든요. 결혼 후 떨어져 살던 부부는 코로나 기간에 한국에서 함께 살기도 했는데요. 23년 겨울, 꿈만 같던 한국에서의 생활이 끝나고 가족은 다시 헤어져 살게 됐습니다.
2: ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ रहूं, उनका बचपन देखूं, तो मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, मेरे बच्चे मेरे पास हों, जैसे बच्चों का एक बचपन ही तो होता है जो इंसान जिसको देखा जाता है जिसको फील किया जाता है महसूस किया जाता है बच्चों की छोटी छोटी सी बातें छोटी छोटा सा उनकी शरारतें वो इंसान को बहुत ज्यादा मुतासर करती है बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को देख लूं ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है
1: इगोसन साहिवाल 시내인데요 아짐 씨 동생

0: 了磨下的哦，哎，哦哦，
1: 무하지마의뽀뽀세례가이어집니다아빠의빈자리는과연무엇으로채울수있을까요
0: 네너오아진이가또때문에뭐무슨뭐무슨아빠는그렇게빨리갈지요
2: अजीम ने तो बहुत कोशिश की है कि चलो इसका काम बन जाए तो हमारे पास आ जाए नहीं बना और मुस्फिरा वीडियो कॉल पे तो बात करती है अब जब सामने आएंगे तो फिर पता नहीं वो क्या करती है पहचानती है या नहीं पहचानती ये तो फिर मुस्फिरा पे है ना
1: अंजेंगा गाजोगी मन्नाने नाल मुस्फिरा는 아빠를 알아볼 수 있을지 시간이 지날수록 엄마의 걱정은 커져만 갑니다 그날 저녁
2: 이들 봐보자 나 내려 오케이?
3: 오케이
2: 무스크라 아비 देखना बेटे
3: 네 이들 세
2: हां जी इधर से इधर से 봐보자 나인게 फिर आप देखना ठीक है
1: 난생 처음 아짐 씨가 한국에서 일하는 모습을 지켜보게 된 가족 뒤이어 가족을 향한 영상 편지도 전해졌습니다
4: मैं ये मैं मेरी फैमिली के लिए है कि मैं आपसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ लेकिन मैं अगर अलग रहता हूँ तो मुश्किल है कुछ ऐसी मुश्किलात होती हैं जो इंसान अल्फाज से बयान नहीं कर सकता लेकिन जब मैं आपको खुश देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूं लेकिन मेरा ये दिल से है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं आपकी वजह से ही मैं जिंदा हूं आपकी खुशी की वजह से ही मैं जिंदा यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है
1: सरोरुल एचिताके 그리워하는 이들 가족에게 잠시 후 최고의 선물이 전해집니다 무려 2년 반 만에 만남이 믿기지 않은 우즈마 씨. 무아즈마와 함께 서둘러 짐을 쌉니다.
2: 먹은 거라세요? 코리아 엄마 가 하나 내기야?
3: 와장가
2: 잘게 봐 해피?
3: 아차
1: 먼저 고향 사이왈에서 공항이 있는 수도로 출발 신나게 먹다가 언제 그랬냐는 듯 골아떨어진 두 아이 자고 일어나니 또다시 컨디션 최상입니다.
3: 네, 예고 올.

0: 그날 밤 아빠가 꺼내든 비장의 무기는 바로 장난감 선물입니다. 우와, 효과가 좀 있는 것 같은데요?
1: 바라 맞아 아이가 함 우들 kids cafe 비 जाएंगे बच्चों को लेके बच्चों को बड़ा मजा आएगा उसके अलावा एक दो जगह और सोच रहे हैं हम वहां पे भी अभी जाएंगे
2: मैं बोलता कहते थे मैं अब घर हूं मौसम को लेके मैं गाड़ी पे बहुत उतर
0: जाएंगे मेरे को थैंक यू ये फोन है 며칠 후 다시 만난 아빠 차를 타고 신나는 외출에 나섰는데요. 바로 키즈 카페입니다. 난생 처음 키즈 카페에 입성한 무아즈마. 그야말로 별천지가 따로 없죠.
3: 맞아 아래?
0: 그 모습을 지켜보는 아빠 얼굴에서는 미소가 떠나질 않습니다. 며칠 사이 무스피라와도 친해진 아빠. 이제는 아빠 얼굴을 확실히 아는 것 같은데요?
1: 조금 많이 지났어요. 빌굴 슈룸에 에사이 타게 자보 무제 내게 무제 덜티티도 무제 비 보다 짐 낙다 타게 लेकिन अभी ठीक है वो काफी उसके साथ टाइम गुजरा है छुट्टियां एंजॉय की हैं उसके साथ ही काफी तो इसलिए अभी वो अटैच हो गई है उसे पता चल गया थोड़ा सा
0: शीजी 않고 노력하는 아빠의 모습에 아이들의 마음도 점차 열리고 엄마 또한 모처럼만의 휴식 시간을 갖게 되었답니다.
4: 뭐 डिफरेंस है बहुत ज्यादा डिफरेंस है वहां अकेले खुद सारा मैनेज करना बच्चों की फरमाइशें भी और जिद्दें भी पूरी करने और जहां कह दिए कि आपके बाबा है ना कहो अपने बाबा से खुद ही करें हां ऐसे और बच्चे भी फिर फौरन मां को छोड़ के अपने बाबा के पास जाते हैं कि यहां से नहीं पूरा हो रहा तो वहां से पूरा हो जाएगा हां मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है
0: 그날 오후 바닷가를 찾은 아짐 씨 가족 지금 이 순간이 더욱 소중한 건 며칠 뒤 이별을 앞두고 있기 때문일 겁니다.
4: 맞아요. 못 살게 느낀 듯이는 안 된다. 그래서 그런 거 맞아. 지금 혼자 끌려 가 जाएंगे. 또 로힐 दोबारा रूटीन लाइफ दोबारा सिर्फ मैं अकेली ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕੇਲੇ
3: ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇਹ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਚਾਚੂ ਅਨੇ ਚੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ
0: 얼마 후면 긴 그리움의 시간을 걸어야 할 가족. 하지만 다시 만날 것을 알기에 아빠는 이별 앞에서 용기를 내 말해봅니다. 안녕, 무아즈마. 안녕, 무스피라.